आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं न, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Hey, Voshin Sukin here. Welcome to another edition of Bollywood Billboard on Lotus FM. First, mandatory disclaimer. It's Dev Anand's birth anniversary today. And our intention with the following program isn't to compare two of the greatest singing legends in Bollywood, Mohammed Rafi and Kishore Kumar, but rather to combine their talents and contributions to making one screen legend memorable through more than dialogue and screen presence over the years, but through his music too. Realistically, neither us nor Dev Anand could choose which of these two voices suited him better.
1: Mohammed Rafi or Kishore Kumar?
2: दोनों बहुत बड़े हैं, बड़ा मुश्किल है. देखो, मैं दोनों ही ग्रेट हैं. जब कभी किशोर गाता था और मन से गाता था, जो उसकी रेजोनेंस थी वो किसी के नहीं, आज तक नहीं देखी मैंने. डीप आवाज में जब गाता था, हालांकि ट्रेंड सिंगर नहीं था, रफी ट्रेंड सिंगर था. और जब गजलों की फील आती थी तो हम रफी से गवाते थे. क्लासिकल सिंगर था, क्लासिकल मोल में. तो अब उनको कंपेयर नहीं कर सकते हम दोनों को, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए.

दिल का पर्दा खोल दो। द मूवी जब प्यार किसी से होता है रिलीज इन 1961। That song is composed by Shankar Jay Kishan with lyrics by Hasrat Jaipuri. Well, let's just stay right there in 1961 and relive another beautiful melodious moment from the same movie जब प्यार किसी से होता है। Here's Mohammed Rafi again. कैद मांगी थी रिहाई तो नहीं मांगी थी।

कटवा न जाओ महाराज, हमारे दिल की से लगी कल कटवा हो जाओ महाराज, हमारे दिल की से लगी। रोमियो लेट्स नाचो, वी नाचो द नाइट अवे।